2026 को वर्ष में सीजीटीवी ने ल्याएको छ 2+2 वर्ष को वारंटी साथ ही 36,000 सम्मको क्याशबैक सजिलो 0% ईएमआई को सुविधा नागरिकता भए पुग्छ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप सीजीटीवी खेल सँगै भरोसा सँगै।